0: मिर्ची बायस्को।
1: अरे ये फिल्म ना बिल्कुल वो है जो हम रोज करते हैं। अरे वो जिसके बिना दिन पूरा नहीं होता। अरे वो जो ना हो तो सांस नहीं आती। हाय मैं हूँ श्रुति और मैंने देखी वेलकम टू द जंगल एंड अहमद खान डायरेक्टोरियल हु इज अ स्मार्ट बॉय। भाई इतने सारे एक्टर्स ले लिए हैं कि किसी की भी बुरी एक्टिंग आपको पता ही नहीं चल पाएगी। स्क्रीन टाइम जो नहीं मिलेगा उन्हें,
2: समझ रहे हो?
1: इनको बहुत जोर से ब्रेन रॉट आया, जंगल के नाम पे घटिया सेट बनाया, जानवरों के नाम पे स्टार कास्ट की लंबी लिस्ट बनाई और फिर घटिया CGI और चीप नॉस्टैल्जिया में उसे रोल करके सस्ते नशे के जैसे हमें प्लेटर में सर्व किया।
2: टूट ले मार।
1: तो अगर आपको इंटेलेक्चुअल कॉमेडी पसंद है तो ये फिल्म इंटरवल के पहले ही आपको इमोशनल डैमेज देगी।
3: क्या बात कर रहे हैं?
1: स्टैट्यूटरी वार्निंग, थिएटर जाने से पहले अपना दिमाग घर छोड़ के जाएं। वैसे यू कैन वेट फॉर इट टू कम ऑन OTT एज वेल।
4: अच्छा जी।
1: तो मेरे यानी श्रुति की तरफ से फिल्म वेलकम टू द जंगल को 5 में से 3 मिर्चियां, जस्ट बिकॉज द ऑडियंस लाफ्ड।
0: मिर्ची बायस्कोप श्रुति के साथ इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot.

बस तेरा चले तू ले ले पूरा दिन हो तैयार तू घंटे न गिन मैं हूँ यही एच सर्विस टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट हाथ मेरा थाम लेट मी मेक यू स्माइल आई लाइक योर स्वैग यू लाइक माय स्टाइल देती मुझे विंडो सीट खुद लेती आ जब भी होती लो तू मेरा नंबर

जेंडर स्टीरियोटाइप्स मेरे लिए इतना बड़ा डील ब्रेकर है. सो आई मेट दिस गाय ऑन अ डेटिंग ऐप और हमारी लाइक काफी सही कॉन्वर्सेशन हो रही थी, सब कुछ ऑसम था. एंड देन उसने तीसरी डेट पर मुझसे ये पूछा कि अच्छा तो क्या क्या खाना बना लेती है तू. आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड हाँ, क्या क्या खाना बना लेती है तू. आई वॉज लाइक और कितने करोड़ कमा लेता है तू. तो ही सेड कि इन दोनों क्वेश्चन में क्या कॉमन है. आई वॉज लाइक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कॉमन है. तू मुझसे ये पूछ रहा है कि मुझे क्या खाने खाने बनाने आते हैं क्योंकि मैं एक लड़की हूँ एंड यू आर प्रिज्यूमिंग कि किचन में मेरा हाथ तो काफ़ी लाइक स्किल्ड होगा. तो मैं भी प्रिज्यूम कर रही हूँ क्योंकि तू लड़का है एंड यू आर ऑफ अ सर्टेन एज, इतने करोड़ तो तूने कमा ही लिए होंगे. तो ही सेड कि काफ़ी ऑफेंसिव क्वेश्चन पूछ रही है तू मुझसे. सो आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड कि तू भी मुझसे काफ़ी ऑफेंसिव क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल डज नॉट मीन कि पिंक मेरा फेवरेट कलर है और खाना बनाना मेरा फेवरेट पास्ट टाइम है. और उसके बाद ऑब्वियो आई डिड नॉट मीट दैट गाय अगेन. बट मेरा पॉइंट ये कि जब आप किसी लड़की या लड़के को मिलते हो ना, ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स लेके

होगा, बंदी के बाल लंबे ही होंगे. जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर सो बोरिंग एंड देयर सो 2008. ऑन दैट नोट, अगर आप जेंडर स्टीरियोटाइप हो चुके हो मेरी तरह एंड यू आर लिविड एएफ लाइक आई एम, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर, नोट्स कंपेयर करते हैं. That's the best that we can do anyway. Mera naam hai Mirchi Roshi. Naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E. So go ahead, baby. Hit me up. Do what you're so good at doing. Lekin kahin mat jana jana. Kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi. It's hot. Hi.

0: द ट्रूथ इज लोगों से एक गर्लफ्रेंड संभाली नहीं जाती. आपके पास चार चार गर्लफ्रेंड्स हैं इन फोर डिफरेंट सिटीज. एक को पता चल गया ना दूसरे के बारे में, तो अब आएंगे असली मजे. There you guessed it. It is time for the secret box. जो भी आपका confession, hit me up on Insta या FB. Let's get talking. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की spelling है R-O-C-H-I-E. और मेरे साथ line पर है मेरे mystery caller. Hello, naughty boy.
1: Hello, रोशी.
0: Oh God, you sound hot. आप या बोल भी रहा या. Thank you so much. Yeah. So, haughty mystery caller, मुझे ये बताओ कि आपकी जिंदगी में एक girlfriend है या तीन चार?
1: एक, एक, एक.
0: Nice. For a guy who sounds this hot, I wouldn't be surprised अगर आपकी तीन चार girlfriends हो. लेकिन अगर वो आपकी confession नहीं है, तो क्या है आपकी confession?
1: My confession is कि मैं मेरी girlfriend को मिलाने लेके जा रहा था मेरे घर पे. So, मम्मी थी नहीं घर पे. My father was there. So, हम घर पे गए. मैं सारी बातें कर रहे थे. पापा पूछ रहे थे क्या करते हो, क्या कैसे करते हो, क्या सारी चीजें, यही सारी चीजें जनरली जो होती है डिस्कशन. एंड खाए जा रहे थे लगातार लड्डू, खाना, सैंडविच, मतलब लगातार खाए जा रहे थे. एंड ऑल ऑफ अ सडन व्हाट ही डिड वाज ही फार्टेड. माय फादर फार्टेड.
0: और क्या उन्होंने लाइक लाउड फार्ट किया कि सबको सुनाई दे जाए आपकी
1: yes. लाउड फार्ट किया. एंड यू विल नॉट बिलीव व्हाट ही डिड.
0: व्हाट
1: उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा आपने क्यों फार्ट किया.
0: व्हाट आर यू सीरियस?
1: डोंट ट्रस्ट मी. यू ट्रस्ट मी प्लीज. And I, it was so embarrassing. Yeah, मैंने कहा यार, how can my father do this to me?
0: Oh my God, तो आपके पापा आपकी girlfriend को impress करना चाह रहे थे, तो उन्होंने अपना like fart का blame आपके ऊपर लगा दिया.
1: And that was an embarrassing situation for me to handle.
0: Oh my God. तो फिर आपने क्या किया? आप तो ये भी नहीं कह सकते होगे कि यार नहीं
1: रहा. मैं कुछ नहीं कह सकता था. मैं चुप रहा.
0: Dude, this is called a serious serial confession. आपको तो रोशिफिकेशन की बहुत जरूरत है यार.
1: Yes,
0: एक गहरी सांस लो हॉटी.
2: You've been roshified.
0: अगली बार से ना जब भी आप अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पेरेंट्स से मिलाने ले जाओ या उनके साथ डिनर या लंच कराने ले जाओ, जस्ट मेक श्योर कि आपकी मम्मी साथ में हो. तब आपके पापा ऐसे नॉटी काम नहीं करेंगे.
1: हाँ, ये आइडिया अच्छा है रोशी.
0: है ना, इसे पक्का ट्राई करके देखना. और अगर आपकी जिंदगी में फिर से ऐसा कुछ होना, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सेंड मी योर नंबर. और आप, आपकी भी जिंदगी में अगर ऐसी कोई कन्फेशन है, व्हाई डोंट यू हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है R-O-C-H-I-E. एंड वी विल गेट टॉकिंग बेबी. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू. लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

0: Mirchi, it's hot.
1: तेरी मम्मी की जय

है पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: Mirchi. It's hot.
1: Yeah. I like the way you move right there.

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन की बात और सी।
1: पर 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन से गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: जय कन्हैया लाल की।

सेवा को यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए सेवा मंडल का मैं बहुत आभारी हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये भजन अच्छी लगी होगी। मेरा नाम है भजन कुमार। फॉलो मी ऑन माई चैनल।

0: द ट्रूथ इज लोगों से एक गर्लफ्रेंड संभाली नहीं जाती. आपके पास चार चार गर्लफ्रेंड्स हैं इन फोर डिफरेंट सिटीज. एक को पता चल गया ना दूसरे के बारे में, तो अब आएंगे असली मजे. Did you guess it? It is time for the secret box. Jo bhi aapka confession, hit me up on Insta ya FP. Let's get talking. Mera naam hai Mirchi Roshi. Naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E. Aur mere saath line par hai mere mystery caller. Hello, naughty boy.
1: Hello, Roshi.
0: Oh God, you sound hot.
1: Yeah. Aap,
0: yeah, bol bhi rahi. Yeah, thank you so much. Yeah. So, haughty mystery caller, mujhe ye batao ki aapki zindagi mein ek girlfriend hai ya teen char?
1: एक, एक, एक.
0: Nice. For a guy who sounds this hot, I wouldn't be surprised अगर आपकी तीन चार girlfriends हो. लेकिन अगर वो आपकी confession नहीं है तो क्या है आपकी confession?
1: My confession is कि मैं मेरी girlfriend को मिलाने लेके जा रहा था मेरे घर पे. सो मम्मी थी नहीं घर पे, माई फादर वॉज देयर. सो हम घर पे गए, मैं सारी बातें कर रहे थे, पापा पूछ रहे थे क्या करते हो, क्या कैसे करते हो, क्या सारी चीजें, यही सारी चीजें जनरली जो होती है डिस्कशन. एंड खाए जा रहे थे लगातार लड्डू, खाना, सैंडविच, मतलब लगातार खाए जा रहे थे. एंड ऑल ऑफ अ सडन व्हाट ही डिड वाज ही पार्टेड. My father farted.
0: और क्या उन्होंने लाइक लाउड फार्ट किया कि सबको सुनाई दे जाए आपकी
1: मुझसे बोला कि बेटा आपने क्यों फार्ट किया?
0: What? Are you serious?
1: Don't trust me. You trust me, please. And I, it was so embarrassing. Yeah, मैंने कहा यार, how can my father do this to me?
0: Oh my God, तो आपके पापा आपकी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना चाह रहे थे तो उन्होंने अपना लाइक फार्ट का ब्लेम आपके ऊपर लगा दिया.
1: And that was an embarrassing situation for me to handle.
0: Oh my God. तो फिर आपने क्या किया? आप तो ये भी नहीं कह सकते होगे कि यार नहीं डांट.
1: मैं कुछ नहीं कह सकता था, मैं चुप रहा.
0: Dude, this is called a serious serial confession. आपको तो रोशिफिकेशन की बहुत जरूरत है यार.
1: Yes, Roshi.
0: एक गहरी सांस लो, हॉटी.
2: You've been roshified.
0: अगली बार से ना जब भी आप अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पेरेंट्स से मिलाने ले जाओ या उनके साथ डिनर या लंच कराने ले जाओ, जस्ट मेक श्योर कि आपकी मम्मी साथ में हो, तब आपके पापा ऐसे नॉटी काम नहीं करेंगे.
1: हाँ, ये आइडिया अच्छा है रोशि,
0: है ना? इसे पक्का ट्राई करके देखना. और अगर आपकी जिंदगी में फिर से ऐसा कुछ होना, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सेंड मी योर नंबर. और आप, आपकी भी जिंदगी में अगर ऐसी कोई कन्फेशन है, व्हाई डोंट यू हिट मी अप ऑन इंस्टा या FP. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है R-O-C-H-I-E, एंड वी विल गेट टॉकिंग बेबी. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: आपने एक रील स्किप की, एक नया गाना रिलीज हो गया, एक ट्रेलर आ गया, फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, किसी ने कुछ पोस्ट किया, और इसी बीच शायद एक खूबसूरत गाना आपके पास से निकल गया बिना आपके नोटिस किए। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कंटेंट की कमी नहीं है, अटेंशन की कमी है, और शायद इसलिए आज सबसे मुश्किल काम अच्छा गाना बनाना नहीं, नोटिस किया जाना है। आज मैं बात करने वाला हूं उन गानों की जो भीड़ में अपनी जगह बना रहे हैं, उन सिंगर्स की जिनकी आवाजें आज भी गोल्ड हैं, लेकिन माइक्रोफोन्स कहीं और ही लगे हुए हैं, उन सुपरस्टार्स की जो गायब हैं, और उन आर्टिस्ट की जो एल्गोरिथम को हराकर सीधा आपकी प्लेलिस्ट तक पहुंच गए हैं। हाय, मैं हूं सुरेन, और इस एपिसोड में हम नॉइज नहीं म्यूजिक सुनेंगे। This is India's most definitive Hindi film music countdown, the Mirchi Top 20. And talking of number 20, we've got A.R. Rahman, Irshad Kamil, Vedang Raina aur Nilanjana Ghosh. Ek aisa gana jo pata nahi kyun main har jagah sun raha hoon. This is Mascara from Main Wapas Aunga.
3: Number 20.

What a beautiful song, man. Jagmag Jagmag Jhilmil Jhilmil, Manoj Bajpai ki incredible film Governor se. Is hafte number 19 par ye debut kar raha hai. And mujhe pura yakeen hai ki jisne bhi abhi ye gana suna hoga, uske chehre par ek muskurahat zarur aayi hogi. लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अगर ये गाना किसी छोटी फिल्म का हिस्सा ना होता तो शायद आज और ज्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे होते, और यही हिंदी फिल्म म्यूजिक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी और सबसे बड़ी सच्चाई है। आजकल गाने डिस्कवर नहीं होते, गाने डिलीवर किए जाते हैं। जो दिखाया जाता है हम वही सुनते हैं, जो प्रमोट किया जाता है हम वही गाते हैं, और जो कहीं पीछे छूट जाता है, चाहे वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसे ढूंढने का वक्त किसी के पास है ही नहीं। ये गाना अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया है और जावेद साहब ने लिखा है, और मेरी डिक्शनरी में एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, जब जावेद साहब लिखते हैं ना तो लफ्ज कभी कैजुअल नहीं होते। कुछ महीने पहले उन्होंने 120 बहादुर में भी एक गाना लिखा था जिसे अमित त्रिवेदी ने ही कंपोज किया था, एंड वो गाना मेरे लिए छुपा हुआ हीरा था।

एंड देन आई रियलाइज कि इन दोनों ने सिर्फ 3 एल्बम्स में साथ काम किया है, लेकिन आयशा से लेकर आज तक जब भी साथ किया है कुछ ना कुछ यादगार दिया है।

अरे यार, ये गाना मुझे आज भी कमजोर बना देता है। अजीब बात है ना, छोटी फिल्मों को अच्छे गानों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें सबसे कम सुना जाता है। एंड देन यू गॉट दोज बिग फ्रेंचाइज फिल्म्स जिनमें एक ओके ओके गाना भी पॉपुलर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 18 पर दिस इज चटनी फुल भोजपुरी तड़का, एंड ये है धमाल 4 से।

फहीम अब्दुल्ला का सैयारा पिछले साल का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक एंथम था, हैंड्स डाउन, राइट? और इस हफ्ते भी वो नंबर 17 पर मौजूद है। लेकिन इस गाने को सुनते हुए एक ख्याल आया, बॉलीवुड का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक क्लीशे आखिर क्या है? ये नहीं कि प्यार अधूरा रह जाता है, ये है कि जब दिल टूटता है तो माइक्रोफोन हमेशा लड़के को ही मिलता है। जरा सोचिए ना, चाहे कितना ही पॉपुलर गाना क्यों ना हो।

0: ओह माय गॉड, हर जेनरेशन का डेफिनेटिव हार्ट ब्रेक एंथम। एक आदमी गा रहा है, एक आदमी टूट रहा है, एक आदमी याद कर रहा है, और धीरे धीरे बॉलीवुड ने हमें ये बिलीव करवा दिया कि हार्ट ब्रेक का असली ब्रांड एम्बेसडर मर्द ही होता है। ये बात ही अजीब है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में हार्ट ब्रेक दो लोगों का होता है, लेकिन गाने में रोता हमेशा एक ही है, इट्स द मैन। इस हफ्ते नंबर 16 पर है एआर रहमान का वो नहीं फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, एक ऐसा ट्रैक जो सिर्फ मोहब्बत के खोने की बात नहीं करता बल्कि किसी अपने को खोने की बात करता है, और शायद इसलिए ये इतना गहरा लगता है। लेकिन आज मुझे उस दूसरी आवाज की बात करनी है, वो लड़की जिसका दिल टूटा है, जो बॉलीवुड में हमेशा थी, बस उसे उतनी बार सेंटर स्टेज नहीं मिला, क्योंकि औरतें भी टूटती हैं, उनका भी दिल टूटता है, उनकी भी नींद उड़ती है, बस उनके दर्द को एंथम कम बनाया जाता है, और जब कभी बनाया जाता है तो कुछ बहुत ही खूबसूरत गाने पैदा होते हैं। You've heard this song इन रावण, नंदिनी श्रीकर की आवाज, एक ऐसा गाना जो हार्ट ब्रेक को चीख कर नहीं खामोशी से जीता है। थैंक यू विशाल एंड शेखर, हियर इज माय रिवाइंड ट्रैक, दिस इज भरे नैना।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 5।

0: धुरंधर का आरी आरी इस हफ्ते नंबर 4 पर है और एक बात माननी पड़ेगी, बॉलीवुड को नॉस्टैल्जिया से बहुत प्यार है। पुराने गाने चाहिए, पुराने हुक्स चाहिए, पुरानी यादें चाहिए, बस पुराने सिंगर्स नहीं चाहिए। जरा सोचिए, धुरंधर में ये गाना जो आपने अभी सुना आरी आरी, वो है तम्मा तम्मा लोग ये है, और साथ में है उदित जी की आवाज में ये वाला गाना। एंड देन हाल ही में यू ऑल्सो हर्ड है जवानी तो इश्क होना है का ये गाना कॉल्ड चुनरी चुनरी, जिसमें ओरिजिनल सिंगर अभिजीत नहीं है।
1: तेरी चुनरी लिपट लिपट के पागल मुझे बनाए, पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए।
0: एंड गेस व्हाट, अगला गाना काउंटडाउन पर है ऊंचा लंबा कद, एक और रिक्रिएशन। एंड मुझे रिक्रिएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर है, जिन आवाजों ने इन गानों को एवरग्रीन बनाया, फॉरएवर कूल बनाया, वो आवाजें आज कहाँ हैं? आनंद राज आनंद बेंच पर, अभिजीत भट्टाचार्य बेंच पर, उदित नारायण बेंच पर, रेयरली हर्ड, लेकिन उनके गाने हर दूसरे फ्राइडे को कमबैक कर रहे हैं। बॉलीवुड को गाना याद है, गाने वाला नहीं। और फिर पिछले हफ्ते संडे के दिन इत्तेफाक से एक वीडियो देखा और स्क्रीन पर आए अदनान सामी, और फिर वही गाना जिसके चलते अदनान से प्यार हो गया था।

क्या आवाज है यार, क्या कंट्रोल है, क्या वॉर्म्थ है। सबसे बड़ी बात, द सॉन्ग मेक्स यू फील, द सॉन्ग गिव्स यू फील्स। और तब मुझे एक सवाल खटका, व्हाई इज अदनान सामी सिटिंग एट होम? सीरियसली, आज के कितने सिंगर्स हैं जो अदनान सामी के साथ एक स्टूडियो में खड़े होकर कम्पीट कर सकते हैं? यार बहुत कम। बॉलीवुड का ये सच में अजीब लॉजिक है, पुरानी आवाजों की लेगेसी कैश करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन उन आवाजों को माइक्रोफोन नहीं देना है। खैर, जब तक सिंगर्स वापस नहीं आते, उनके गाने तो वापस आते ही रहेंगे, बॉलीवुड छोड़ेगा नहीं। और इस हफ्ते नंबर 3 पर है वेलकम टू द जंगल से आनंद राज आनंद साहब का ही गाना ऊंचा लंबा का और एवर। नंबर 3।

मशरूका इस हफ्ते भी नंबर दो पर है यार। मुझे तो लगा था कि ये गाना सीधा नंबर वन तक पहुंच जाएगा इस बार, लेकिन एक बार हम बार बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। इंडिया को उसके जासूस बहुत पसंद है, और इस वक्त इंडिया का सबसे फेवरेट जासूस स्पाई है हमजा अली मजारी उर्फ जसकीरत सिंह रांगी, और शायद इसलिए शरारत 19 हफ्ते बाद भी नंबर वन पर बैठा हुआ है। लेकिन स्पाइस की बात निकली है तो 3 जुलाई को दो नए स्पाइस इस लंबी कतार में जुड़ने वाले हैं, आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ। द फिल्म इज कॉल्ड अल्फा, और मुझे लगता है अल्फा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अल्फा खुद नहीं है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली धुरंधर है, क्योंकि धुरंधर के बाद ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस टोटली बदल चुकी हैं। अब ट्रेलर में सिर्फ एक्सप्लोजन्स काफी नहीं है, अब सिर्फ ग्लोब ट्रॉटिंग काफी नहीं है, अब सिर्फ स्लो मोशन एंट्रीज काफी नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली अल्फा का ट्रेलर देखकर मुझे बार बार लगा कि मैं कुछ नया नहीं देख रहा हूं, वही फेमिलियर ट्रोप्स, वही फॉर्मूला, वही टेम्पलेट। यस, बैकग्राउंड स्कोर के कुछ मोमेंट्स जेन्युइनली इंप्रेसिव हैं, लेकिन जब एलीट असैसिंस की दुनिया में ऐसा डायलॉग आए कि वुल्फ की बेटी वुल्फ ही तो होती है, तो थ्रेट कम और टेलीविजन सीरियल ज्यादा लगने लगता है। एंड मे बी दैट्स व्हाई मैं अल्फा को अभी जज नहीं करना चाहता हूं, मैं उसे सिर्फ विश करना चाहता हूं द वेरी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि पोस्ट धुरंधर दुनिया में सरवाइव करना आसान नहीं है। अरे यार, कम से कम ऋतिक रोशन को ही सरप्राइज रहने देते, ट्रेलर में पूरी फिल्म तो वैसी दिखा दी। खैर, जिस पाए ने वो बेंचमार्क सेट किया उसका राज अभी खत्म नहीं हुआ है। जैस्मिन सैंडलर्स और मधुबंती बागची, यालीना और हमजा की शादी वाला गाना दिस इज शरारत 19th week at number 1।

0: एक और हफ्ता खत्म, कुछ गाने चार्ट्स पर चढ़ गए, कुछ नीचे आ गए और होपफुली कुछ नए ऑब्सेशंस मिल गए। ये था मिर्ची टॉप 20 का लेटेस्ट। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक नॉइज को कम सुनिए, म्यूजिक को ज्यादा। सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो हेलो, मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक होने वाला है, अ स्पेशल गाना स्पॉटलाइट, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। पिछले हफ्ते से पूरे 5 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अनूप जैन की आवाज में उनका गाना अर्ज किया है, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद एक नई नवेली एंट्री हो रही है, गाने का नाम है साड़ी सुन, हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी, दीप क्लेयर के लिरिक्स एंड कॉम्पोजिशन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड सिमरत कौर। इस गाने ने डेब्यू किया सीधा ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक, अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन नंबर 10, देन साड़ी सुन ऑन गाना नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: ऑब्वियसली जनता को गाना तो ये पसंद आ रहा है, इस गाने से ज्यादा उनको गाने की कास्टिंग पसंद आ रही है। हर्ष नुसी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन अलॉन्ग विद दीप क्लेयर उनके लिरिक्स। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड सिमरत कौर। नई नवेली एंट्री सीधा ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJ कनिका। कोई गाना शेयर करना हो, किस्सा कहानी कुछ भी बताना हो, @RJ कनिका और इंस्टाग्राम पर आके क्विकली हिट मी अप। गाने शेयर करने से ज्यादा आपके सवाल मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। हर हफ्ते एटलीस्ट 10 लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे यार ये गाना नंबर 9 पे क्यों था, ये तो नंबर 4 पे होना चाहिए था, या ये तो नंबर 1 पे होना चाहिए। तो आई वांट टू क्लियर इट वंस एंड अगेन दैट ये गानों की रैंकिंग मैं या मिर्ची बैठ के डिसाइड नहीं करते हैं, ये आप ही लोग डिसाइड करते हैं। आप ही जो प्यार देते हैं इन गानों को, हमारी टीम्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को देख के, आप कितनी बार सुन रहे हैं, आपके लाइक शेयर प्लेस को एनालाइज करके इन गानों की रैंकिंग बनती है। तो अल्टीमेटली यू आर द वन जो ये काउंटडाउन डिसाइड करते हैं। हर हफ्ते गाने आते हैं और गाने जाते हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिनका कोई ना कोई टेक अवे फैक्टर हमारे दिल में रह जाता है। कभी वो सिंगर की आवाज होती है, कभी वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट मुझे इंट्रो म्यूजिक लगता है कि पहले नोट से ही अंदाजा हो गया कि गाना कौन सा है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए, इट्स टाइम फॉर इंडी पॉप क्विज। मैं आपको एक गाने का आइकॉनिक इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ। गाना भी बहुत आइकॉनिक है, सुन के बताओ कौन से वाला गाना है।

0: वही वाला गाना है जो आपको लग रहा है, लेफ्ट राइट वालों को नहीं, एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ। शो पर आगे बढ़ते हो, ये पूरा गाना मैं आपके लिए प्ले करूंगी इन आर सेगमेंट कॉल्ड कैसेट क्लासिक, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जम करके अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी, इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8।

गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Gana Indie Top 10. Kanika ke saath on Mirchi. Number 6.

0: आदित्य रिखारी की आवाज अलोंग विद कुटले खां रावटोर का म्यूजिक. गाने का नाम है ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. पूरे 10 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले एमसी स्क्वायर राधिका भिडे विकेट सनी का लॉन्ग वे फ्रॉम होम वॉज ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ.
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना हो बिंदास आके बताओ. इट्स टाइम फॉर आवर फेवरेट पार्ट ऑफ द शो. इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारा कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

यूफोरिया द बैंड का मायरी एंड आपके मैसेजेस प्यार ने मेरा और अश्काय का तो दिन बना दिया। इतनी सारी रिक्वेस्ट आई है इस गाने के बाद दैट आज वो गाना पिक करना कि हम कौन सा प्ले करने वाले हैं वाज अ डिफिकल्ट चॉइस एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू प्ले दिस वीक इज

The one and only तेरा मेरा प्यार by कुमार सानू. ये गाना 2002 में रिलीज हुआ था and आज भी almost 24 साल बाद जब मैं ये गाना सुनती हूँ तो it still gives me that rush of first love, पहली मुलाकात. I swear every time I used to listen to this song मैं ना अपने आप में blush कर रही होती थी कि बस कोई मेरे लिए ही गा रहा है ये गाना कि stop it. And till date this song makes me feel like that. This song gave us Nimrat Kaur, one of her earliest appearances. And that pink top that she's wearing in the video, मैंने अपनी मम्मी को इतना तंग किया था, ऐसा ही टॉप खरीदना है मुझे. What I love about this song is that there is love. कोई ऐसा अमीर बड़ी गाड़ी से निकलने वाला हीरो नहीं है, कोई ऐसे फैंसी लोकेशंस नहीं है. एक मूवी थिएटर है, so first eye contact, बस दो लोग, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी फ्लर्टिंग, दोस्त चिढ़ा रहे हैं, एवरीथिंग जो मेरे और आपके साथ कॉलेज में हुआ है या हम चाहते थे हुए, एंड इस सब को इनकैप्सुलेट करती है कुमार सानू की आवाज, व्हिच इज जस्ट नॉस्टैल्जिया का पीक. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. टू थिंक अबाउट योर ओल्ड क्रशेस दिस वीक ऑन कैसेट क्लासिक, दिस इज तेरा मेरा प्यार, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

Dude, I almost feel embarrassed the way this song makes me blush. क्यों मतलब मेरे लिए कोई नहीं गा रहा है बट है ऐसा ही है मेन कैरेक्टर सिंड्रोम ही है ये कुमार सानू की आवाज में दैट वॉज तेरा मेरा प्यार अ 2002 सॉन्ग ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक जितने सारे लोगों ने इसको रिक्वेस्ट किया मैं नाम लेने बैठूंगी तो बहुत लंबी लिस्ट है थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग अस ऑफ दिस सॉन्ग अगेन एट RJ करिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आओ जो गाना आपको आज भी ऐसे गिडी गिडी फील कराता है फ्रॉम द 90s एंड 2000s अ इंडी पॉप सॉन्ग मुझे और अश्काय को आकर बताओ ऑन एट RJ कनिका एंड वी विल फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक Now back to the countdown, अगले वाले गाने की तरफ संजू राठौड़ इज बैक एंड हाउ दिस टाइम विद बैंगल्स पिछले हफ्ते से तीन पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बैंगल्स इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5 यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10 बंदी का नाम है कनिका एंजॉय नंबर 5

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।

0: दिलजीत दोसांझ एंड सिया की आवाज, डेविड गेटा का प्रोडक्शन, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन तीन आर्टिस्ट का नाम एक सांस में लूंगी, बट दैट इज 2026 का म्यूजिक सीन फॉर अस।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Karenga ke saath, this is the Gaana Indie Top 10. Only show on Mirchi, jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jaye, mera handle is @RJKanika. Koi gaana share karna hai, koi baatein batani ho, bindaas aake hit me up. Yahan par hum aane wale gaano ko discuss karte hain. Kaun naye collaborations ho rahe hain, kiska gaana hua countdown se out, ya kaun sa gaana ho sakta hai in. गाना नंबर 4 पे हमने दिलजीत एंड सिया का गाना सुना रांझा, विच इज सच एन आइकॉनिक कोलैबोरेशन। इंडियन इंडी पॉप में भी हमने ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोलैब्स देखे हैं। वी हैव स्पोकन अबाउट डिवाइन करण औजला का स्ट्रीट ड्रीम्स, देयर इज बादशाह दिलजीत दोसांझ, बट देयर इज वन कोलैब जिसके ऊपर मैं आज एक बड़ी वाली स्पॉटलाइट मारना चाहती हूँ। इट्स बाय दीज टू इनक्रेडिबल आर्टिस्ट कॉल्ड अकासा एंड आस्था गिल। गाने का नाम है नागिन एंड इट वाज सच अ रेजर इन 2019। नागिन में अकासा एंड आस्था दोनों अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को लेकर आती हैं। कोई किसी को ओवरशैडो नहीं कर रहा है, बल्कि वो गाने में इतने मजे कर रही हैं दैट हमें भी सुन के मजे आते हैं। इंडिविजुअली आस्था गिल अप टू दैट पॉइंट वाज नोन फॉर दिस सॉन्ग। On the other hand, Akasa is such a versatile artist. वो high energy, intensity वाले गाने भी गा सकती हैं and बहुत प्यारे love songs like this one. दिल ना जाने And ये दोनों iconic artist आती हैं to create Nagin, which I absolutely love. Even 2019 से 2026 तक I cannot name a lot of female duo pop songs. अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। Here's me putting it out in the universe. आस्था एंड अकासा, we need a new song from you. This is Nagin on our Gaana Spotlight only on Gaana Indie Top 10. वदी का नाम है कनिका। Enjoy.

0: पॉप कल्चर मोमेंट है ये गाना, सुन के ऐसे नॉस्टैल्जिया भी लग रहा है एंड बहुत नया भी है। आज तक की लकाजा की आवाज में दैट वाज नागिन। एट आरजे कनक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड इस इंडी पॉप क्विज का आंसर करो। 2 साल पहले सुनिधि चौहान एंड श्रेया घोषाल, द टू लीडिंग पॉप स्टार्स का एक गाना आया था, दे कोलैबोरेटेड टुगेदर इन अ सॉन्ग, गाने का नाम मुझे आके बताओ। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी। दिलजीत दोसांझ once again with his song Dealer, 14 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके Dealer is this week on गाना नंबर 3। You are listening to गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, enjoy।
1: नंबर 3।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप. शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं. इंस्टाग्राम पर जाएं, कनेक्ट विद मी, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना है या किसी गाने के बारे में कुछ सवाल है, होते हैं यार, अंटशंट आते हैं पर मजे आते हैं मुझे, @RJKanika पर आओ बिंदास आके हिट मी अप. इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, बट बिफोर दैट लेट्स डू अ राउंड अप राइट फ्रॉम द टॉप. अनूप जैन का अर्ज किया है वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10.
3: कायर जो थे वो शायर बने.
2: नई नवेली एंट्री हर्ष नुसी का साड़ी सुन ऑन गाना नंबर 9.
4: अखियां अखियां मिलाते सही साड़ी सुने अपनी सुनाते सही.
2: अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 8.
5: लोरी चुनरिया उड़ी उड़ी जाए रे.
2: एमसी स्क्वायर का लॉन्ग वे फ्रॉम होम ऑन गाना नंबर 7. देन आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 6. संजू राठौर का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 5.
6: लाल कलर की बांगड़ी, बांगड़ी का कलर लाल.
2: दिलजीत एंड सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 4.
7: रोग किसे नूनी रोग लबे.
2: दिलजीत येट अगेन विद डीलर ऑन गाना नंबर 3.
8: जिधर तू पीछे यातन गीना चौबर जोगी डब दबीना.
2: द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक मिट्टा रोर एंड स्वरा वर्मा की आवाज में शीशा कंपोज्ड बाय मिट्टा रोर दिस वीक ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद द न्यू मेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक द ब्रेक थ्रू हरियाणवी ट्रैक. गाने का नाम है बैरन बाय बंजारे. 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जंप करके बैरन इज येट अगेन ऑन गाना नंबर 1. शीशा एंड बैरन दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
0: नंबर 2.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अकड़ी बकड़ी दिक्क दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्क दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कीरो दिक्कीरो दिक्कीरो दिक्कीरो दिक्कीरो।

रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

देखो, अलार्म क्लॉक और हमारे घर वालों में एक ही डिफरेंस है। अलार्म क्लॉक को स्नूज किया जा सकता है, लेकिन घर वालों को नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, जो कि ऑफिशियली शुरू हुआ है। यहाँ पर कॉफी से पहले गॉसिप और चाय से पहले थोड़ी चटपटी बातें होती है, जो कि आज हम करने वाले हैं। अगर तुम अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हो, या फिर सबवे पकड़ रहे हो, या फिर अपने लैपटॉप को खोलकर खुद का ही रिफ्लेक्शन देख रहे हो, या फिर परौंठे पलट रहे हो, मैं तुम्हारे साथ में रहने वाले हो अगले कुछ घंटों तक। वैसे एक बात बताऊं, देसी लोग दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन सुबह सुबह का पहला थॉट तो सेम ही होता है, बस 5 मिनट और। और अगर तुम भी आज इसी थॉट के साथ उठे हो, तो फटाफट से मुझे बताओ तुम्हारा सुबह उठने का रूटीन क्या होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्किन केयर, आई एम टॉकिंग अबाउट उठने के लिए क्या रिचुअल्स तुम्हें करने पड़ते हैं कि फाइनली बेड से उतर जाओ, अपने कामकाज से लग जाओ। और आर यू लाइक सुपर एक्टिव, आँख खुलते ही बेड से उतर जाते हो और वर्कआउट करने लग जाते हो? मेरा नाम है प्रिसिला, मुझे इंस्टा और एक्स पर तुम डीएम कर सकते हो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसला, सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और चलो रिवाइंड मारते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले 1855 झारखंड में संथाल रिबेलियन शुरू हुई। सिद्धू एंड कानू मुर्मू ने हजारों लोगों के साथ ब्रिटिश रूल और जमींदारी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। ये इंडिया के अर्लिएस्ट ऑर्गेनाइज्ड फ्रीडम मूवमेंट में से एक माना जाता है। फिर 1859 में And imagine this, एक फ्रेंच डेयरडेविल ब्लॉन्डन ने नाइग्रा फॉल्स को टाइटरोप पे क्रॉस करके दिखाया। भाई मैं अपने घर पर सीधी फर्श पर चलते चलते गिर जाती हूँ। 1908 में साइबेरिया में हुआ टंगुस्का इवेंट रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड ब्लास्ट, इतना पावरफुल था कि 8 करोड़ पेड़ गिर गए। एंड 1934 का दिन हिस्ट्री के लिए एक डार्क चैप्टर था। हिटलर ने नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स नाम का ब्रूटल पर्ज शुरू किया, जिससे उसने अपनी पावर और मजबूत की। वेल, हिस्ट्री हमें एक ही बात सिखाती है, कुछ लोग बैलेंस बनाते हैं और कुछ लोग बैलेंस बिगाड़ देते हैं दुनिया का। फिलहाल तुम अपनी लाइफ का बैलेंस बनाओ, अपने काम भी करते जाओ और मुझे भी साथ में सुनते जाओ। मेरा नाम है प्रिसला, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट करना चाहते हो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्ची दर गानों का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

प्रिसिला तुम्हारे साथ में है, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। अब यहाँ गॉसिप जो है एकदम गर्मा गर्म आती है, और अभी मैं फिलहाल बॉलीवुड बज लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। डांसर एक्टर राघव जुयाल एंड इन्फ्लुएंसर एक्टर निहारिका एनएम ने इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी पिक्चर्स डाली है कि फैंस ने कॉमेंट सेक्शन को CID ऑफिस बना दिया है। अब सवाल ये है कि हार्ड लॉन्च है या सॉफ्ट लॉन्च है, या फिर ये सिर्फ प्रोजेक्ट लॉन्च है, क्योंकि दोनों ने ऑफिशियली अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया है, लेकिन स्पेक्यूलेशन का इंजन जो है वो फुल टर्बो पे चल रहा है। और मसाला तब और बढ़ गया जब रैपर रफ्तार ने कमेंट्स में बस 3 इविल आई इमोजीज ड्रॉप कर दिया। बस फिर क्या था, इंटरनेट ने कहा हमें क्लूज मिल गए हैं। अरे भाई, इमोजी भी एविडेंस बन गए आजकल, तुम समझ नहीं रहे हो। सच क्या है, रिलेशनशिप है या अपकमिंग कोलैबोरेशन है? अभी तो सस्पेंस ही सस्पेंस है फिलहाल। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में एक बात तो पक्की है कि एक पोस्ट 1000 थ्योरीज को जन्म दे देती है। वैसे अगर तुम भी ऐसी थ्योरीज में बिलीव करते हो तो मुझसे शेयर करो तुम्हारी थ्योरी। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिज, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्चीदार बैंगर्स चलाते हैं, स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

आज का वेदर इतना मूडी है ना कि सुबह बोलेगा गुड मॉर्निंग और दोपहर तक आते आते सरप्राइज मैं तो तंदूर बन गया हूँ कह सकता है तुमको। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। ये ऑफ कोर्स है मिर्ची मॉर्निंग। तो सीन क्या है फिलहाल, अभी टेम्परेचर है 68 डिग्री फारेनहाइट और स्काई जो है वो मोस्टली क्लियर है। मतलब मॉर्निंग वॉक का अगर तुम्हारा मूड है ना तो बस सनस्क्रीन लगाओ और काम पे चले जाओ। दोपहर तक मर्क्यूरी फुल एटीट्यूड दिखाने वाली है, हाई जाने वाला है 91 डिग्री फारेनहाइट तक और 2 से 3 बजे के बीच में पार्टली क्लाउडी स्काइज भी दिखाई देंगे। 3 बजे के बाद क्लाउड्स थोड़े से और बढ़ेंगे, लेकिन गुड न्यूज ये है कि रेन का कोई चांस नहीं है। 0 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड। अम्ब्रेलास को घर पर रहने दो, पानी की बॉटल को साथ में ले जाना, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड क्योंकि ऊपर से तो बरसने नहीं वाला है। अच्छा ये सुनो, आज है ना एक्सट्रीम हीट वार्निंग भी इशू हुई है। वार्निंग क्या है जी, वार्मिंग ही है, साथ में एयर क्वालिटी अलर्ट भी है। मतलब अगर आउटडोर प्लान्स बन रहे हैं तुम्हारे स्पेशली आफ्टरनून में तो थोड़ा सा इजी लेने का है मामला। हाइड्रेट करते रहना, लाइट क्लोथ्स यानी कि लेयर के प्लेयर बनकर जाना बाहर और अगर पॉसिबल हो तो एसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो आज के दिन। साथ साथ में अपना SPF 50 वाला सन प्रोटेक्शन, सन ब्लॉक, सनस्क्रीन भी लगाकर जाना। वैसे भी देसी लोग हर सीजन में एक ही डायलॉग बोलते हैं, बस थोड़ी सी चाय मिल जाती तो मौसम का और मजा आ जाता। तो चाय भी पीते ही रहना एकदम हॉट हॉट, जस्ट लाइक द सॉन्ग कमिंग अप नेक्स्ट। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। ले दे एक छोटा सा ब्रेक, मिलती हूँ तुम्हें नेक्स्ट आवर में। अभी फटाफट से नोट करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम। इंस्टा और एक्स पर जाकर मुझे फॉलो करो, MIRCHIPRIS पर, और व्हाट्सएप करो मुझे अभी के अभी 9033 मिर्ची पर, यानी कि 9033647244। Stay tuned and stay hot. Radio Mirchi. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: हेलो मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसला एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स का वो सेगमेंट जहां पर हम अपडेट्स लाते हैं अराउंड द वर्ल्ड की। सबसे पहले इलॉन मस्क इज बैक इन द ट्रिलियनेयर क्लब। टेस्ला और स्पेसएक्स के शेयर प्राइजेस में जंप के बाद उनकी नेटवर्थ एक ही दिन में ऑलमोस्ट 69 बिलियन डॉलर्स बढ़ गई। मतलब हम लोग यहाँ पर कैशबैक का नोटिफिकेशन देख के खुश हो जाते हैं और वहां पर वो बिलियंस में खेल रहे हैं।
1: और नंबर टू पर एक FIR रजिस्टर हुई है अगेंस्ट क्रिकेटर शशांक सिंह एंड हिज फादर शैलेश सिंह, अ रिटायर्ड IPS ऑफिसर, आफ्टर देयर कुक अक्यूज्ड देम ऑफ असॉल्ट, अब्यूज and wrongful confinement in Bhopal. The investigations are ongoing.
0: और finally, FIFA से football fans के लिए बहुत ही बड़ी sad news है। Four-time champions Germany FIFA World Cup से बाहर हो गए after losing a dramatic penalty shootout to Paraguay. Match extra time के बाद 1-1 था, लेकिन penalties में Paraguay ने history create कर दी। Football सच में वो game है जहाँ पर final whistle से पहले prediction करना ही नहीं चाहिए। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में। This was मिर्ची आवर का थ्री फॉर दिस आवर। मिलती हूँ तुम्हें नेक्स्ट आवर में विद द नेक्स्ट मिर्ची आवर का थ्री। तब तक के लिए तुम मुझे फॉलो करो। मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज का क्विक टेक अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है। व्हाट्सएप फाइनली तुम्हारी प्रिवेसी को थोड़ा सा और स्टाइलिश बना रहा है। अब जब तुम किसी नए इंसान से चैट स्टार्ट करोगे और अपना नंबर नहीं देना चाहते हो, ये जरूरी भी नहीं कि अब उसको नंबर दो। बस अपनी सेटिंग्स में जाओ, अकाउंट में जाओ, यूजर नेम में जाकर अपना एक यूनिक यूजर नेम रिजर्व कर सकते हो। और अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम यूजर नेम अवेलेबल है तो उसे भी क्लेम कर सकते हो। मतलब अब हाय व्हाट्स योर नंबर की जगह हाय व्हाट्स योर यूजर नेम पूछा जाएगा। और अगर तुम अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हो, किसी के साथ सिचुएशनशिप में और नंबर शेयर नहीं करना चाहते हो, तो यूजर नेम दे सकते हो, प्रीटी मच लाइक टेलीग्राम। एंड स्पीकिंग ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट, अगर 4th of July तुम भी बिना कुछ कहे स्पार्कल करना चाहते हो तो ये सुनो, कैरेट लेन इजलिन लेकर आए हैं अपना गॉर्जियस एवरीडे डायमंड कलेक्शन जस्ट फॉर यू। सिर्फ गहने नहीं है यहाँ पर, तुम्हारे किरदार की कहानी बयां करते हुए नायाब हीरे हैं वहां पर। वाओ, व्हाट पावरफुल लाइन। और सिर्फ 4th and 5th July के लिए डायमंड ज्वेलरी पर फ्लैट 20% ऑफ मिल रहा है। सो वेदर यू आर गिफ्टिंग टू समवन स्पेशल, यू आर प्लानिंग टू पॉप द क्वेश्चन, या फिर खुद को हैप्पी फील कराना है, सेल्फ गिफ्टिंग का कुछ प्लान है तुम्हारा, तो लेट द डायमंड्स डू ऑल द टॉकिंग। एंड अभी फिलहाल इफ यू लाइक माई टॉकिंग देन गो एंड चेक आउट माई इंस्टाग्राम एंड एक्स प्रोफाइल्स। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, यानी कि MIRCHIPRIS। और साथ में व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग। मेरे बर्थडे बेबीज कैसे हैं आज? जून 30th के जो बर्थडे बेबीज हैं उनके साथ कौन से सेलिब्रिटीज शेयर कर रहे हैं अपना हैप्पी वाला बर्थडे? लेट्स फाइंड आउट। ओलंपिक्स के GOAT माइकल फेल्प्स, द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन एवर। फिर बॉक्सिंग रिंग के लेजेंड नन अदर देन माइक टाइसन। हॉलीवुड एक्ट्रेस लिजी कैपलन भी आज ही अपना बर्थडे मनाती है। और हमारे देसी कलाकार भी है बहुत सारे, दी एवर ग्रीन एक्टर अरविंद स्वामी, जिनकी स्माइल पर 90s का हाफ इंडिया फिदा था। तेलुगु सुपरस्टार अलारी नरेश, एक्ट्रेस अविका गौर, फुटबॉलर डेंजल फ्रैंको और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रिया सुले भी आज अपना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और अगर आज के दिन तुम भी इस धरती पर आए थे तो टैलेंट, डिटर्मिनेशन और थोड़ी सी मेन कैरेक्टर एनर्जी तो पैकेज डील में आई थी तुम्हारे साथ। मेरी तरफ से दुआ है कि तुम्हारा नया साल जो है वो हिट प्लेलिस्ट की तरह हो, जिसमें एड्स कम हो, हैप्पीनेस ज्यादा हो और जीरो बफरिंग हो। और हाँ, अगर तुम्हारा आज हैप्पी बर्थडे है तो अपने बर्थडे के इनवाइट्स और केक्स मुझे भेज सकते हो। इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, यहीं पर तुम मुझे किसी और को विश करने के लिए बर्थडे शाउट आउट भी भेज सकते हो, एंड आई विल टेक देयर नेम ऑन एयर एंड ऑल्सो रीड आउट योर विशेज। तो फटाफट से वो भेजो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, 9033647244 इज माई नंबर। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: right, my Mirchi fam, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. क्विक पॉज लेंगे हम यहाँ पर म्यूजिक का, क्योंकि अब टाइम आ चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर सुनने का गोल्ड रेट अपडेट.
1: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड रेटिंग एट $4,330, $4,330 पर ट्रे आउंस के साथ गोल्ड की प्राइस अबाउट $200 आउंस अपवर्ड ट्रेंड पर है. $200 ट्राई आउंस गोल्ड के प्राइसेस पिछले हफ्ते से ऊपर चले गए हैं. इससे पहले गोल्ड और ऊपर जाए, राज ज्वेल्स के साथ स्पेशल फाइनेंसिंग ऑफिस में आप 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड. आप गोल्ड का प्राइस आज लॉक करके ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं अप्रूव होने पे, और 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ बिना किसी हिडन फी के 9 मंथ की फाइनेंसिंग ऑप्शन में ज्वेलरी आपकी और गोल्ड का प्राइस लॉक करके आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं. कैसे? आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
0: देयर यू गो, योर गोल्ड रेट अपडेट डन एंड डस्टेड. अब फटाफट से मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

जब तू लटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसे जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: बावला सा रंग तेरा, बावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. एंड अब बारी है मिर्ची आवा का 3 की. यहाँ पर तुम्हें मिलती है 3 अपडेट्स. सबसे पहले एक सीनियर यूएस ऑफिशियल ने कहा है कि इंजीनियरिंग टैलेंट और वर्कफोर्स के स्केल पर इंडिया ही वो देश है जो चाइना को मैच कर सकता है. उन्होंने इंडिया को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की ग्लोबल रेस में एक इंडिस्पेंसेबल पार्टनर भी बताया है. नंबर 2 पर इंडिया ने 1 जुलाई से कमर्शियल बायर्स के लिए पेट्रोल और डीजल रिटेल सेल पर लगी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी है. ये टेम्पररी मेजर्स ग्लोबल एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शन के दौरान लगाए गए थे. अब रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट होने के बाद फ्यूल परचेजिंग रूल्स फिर से नॉर्मल हो रहे हैं. एंड फाइनली फीफा से ब्राजील ने जापान को 2-1 से हरा दिया और विनिंग गोल आया 95th मिनट में. मतलब फुटबॉल भी कभी कभी ना बॉलीवुड के क्लाइमैक्स से कम ड्रामेटिक नहीं होता. लास्ट मिनट तक टीवी ऑफ करने वाले फैंस जो है उनको ये अच्छा लेसन मिला होगा. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स। अब हम पता करते हैं हमारे सितारे आज क्या कह रहे हैं।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: एरीज यानी कि मेष राशि, आज जुपिटर और वीनस दोनों तुम्हारी साइड पर हैं। स्माइल करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस पहनो और क्रिएटिव लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। लक वहीं पर मिलने वाला है। लकी कलर इज कोरल ऑरेंज। लकी नंबर इज 18। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज अपॉर्चुनिटी के बिना अपॉइंटमेंट आ सकती है। ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, कभी कभी यस सबसे इंटेलिजेंट आंसर होता है। लकी कलर इज एमरल्ड। लकी नंबर इज 5। जेमिनी यानी मिथुन राशि, प्लान्स डिले हो रहे हैं, कोई बात नहीं, चिल मारो। मर्क्यूरी थोड़ा सा ड्रामा कर रहा है, कॉफी पी लो, थोड़ा सा पेशेंस धर लो, रीसेट भी कभी कभी प्रोग्रेस होता है। लकी कलर इज स्काई ब्लू। लकी नंबर इज 27। कैंसर यानी कर्क राशि, डॉलर की टेंशन थोड़ी सी साइड पे रखो अभी। यूनिवर्स तुम्हारी स्प्रेडशीट से ज्यादा स्मार्ट है, ट्रस्ट करो, सब स्टेप बाय स्टेप सेटल हो जाएगा। लकी कलर इज पर्ल व्हाइट। लकी नंबर इज 11। लियो यानी कि सिंह राशि, फ्रेंड्स के साथ मिलकर आज कुछ प्रोडक्टिव हो सकता है। टीम वर्क आज तुम्हारा सुपर पावर है, बस मीटिंग को चाय ब्रेक मत बना देना। लकी कलर इज रॉयल गोल्ड। लकी नंबर इज 39। वर्गो यानी कन्या राशि, हर रिक्वेस्ट पे हाँ बोलना जरूरी नहीं होता, आज अपनी एनर्जी जो है उसे सेव करो। रिमेम्बर सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश। लकी कलर इज लैवेंडर। लकी नंबर इज 24। ये था आज का पहला राशि जोन। बाकी बची हुई राशियों को लेकर दूसरे राशि जोन में आऊंगी थोड़ी सी देर में। तब तक तुम्हारे लिए ये मिर्चीदार बैंगर्स प्ले करूंगी और तुम्हें याद दिलाऊंगी कि मुझे जाकर इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रेस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मुझे मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हो, मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: वेलकम बैक माय दोस्त, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारी होस्ट। शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स और ये चल रहा है राशि जोन पार्ट टू।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लिब्रा यानी कि तुला राशि, आज स्लो होना बिल्कुल ओके है। हर वक्त हसल मोड में रहना जरूरी नहीं है, रिचार्ज भी प्रोडक्टिविटी का ही पार्ट होता है। लकी कलर इज मिंट ग्रीन, लकी नंबर इज 30। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, करियर स्पॉटलाइट तुम्हारी तरफ मुड़ सकती है। किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान से मिलने का चांस मिले तो कॉन्फिडेंटली हेलो बोलना। अपॉर्चुनिटी नॉक करे तो हेडफोन्स उतार लेना। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, आज लोग थोड़े ज्यादा ओपिनियनेटेड लग सकते हैं। हर डिबेट जीतना जरूरी नहीं है, कभी कभी पीस भी विनिंग की स्ट्रेटजी होती है। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 22। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, पार्टनर शिप्स और जॉइंट प्लान्स थोड़ा सा स्लो चलने वाले हैं। गुड, इससे तुम्हें रीथिंक करने का मौका मिलेगा। बेटर प्लान, बेटर रिजल्ट्स। लकी कलर इज चारकोल, लकी नंबर इज 41। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, कंप्लेनर्स की वॉल्यूम आज हाई हो सकती है, लेकिन तुम अपनी फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव ही रखो, बिल्कुल मिर्ची की तरह। हर बैटल ज्वाइन करना जरूरी नहीं होता है, कुछ बैटल्स छोड़ देना चाहिए। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 13। पाइसीज यानी मेन राशि, आज किसी की हेल्प करने का मौका मिले तो मिस मत करना। तुम्हारी काइंडनेस किसी और के दिन को कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकती है, और कार्मा अटेंडेंस जरूर लगाता है, समझे। लकी कलर इज रोज पिंक, लकी नंबर इज 36। एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन पार्ट टू। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम अक्रॉस सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और एक्स पर, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी चलाते हैं मिर्ची दर बैंगर्स तुम्हारे लिए। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

बस यार आज की मिर्ची मॉर्निंग्स यहीं तक, पता नहीं चला यार कब चाय ठंडी हो गई और शो जो है वो खत्म हो गया। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विथ मी। लेकिन जाने से पहले तुम्हें कुछ बताकर जाती हूँ। माइकल जैक्सन की लाइफ पर बन रही है माइकल नाम की मूवी जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड $977 मिलियन की कमाई करके हाईएस्ट ग्रॉसिंग बायोपिक ऑफ ऑल टाइम का क्राउन अपने नाम कर लिया है। इसमें माइकल जैक्सन का रोल उनके ही नेफ्यू जाफर जैक्सन ने प्ले किया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म ने ओपेनहाइमर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है उसे बहुत पीछे छोड़ दिया है। मतलब किंग ऑफ पॉप का मैजिक आज भी फुल वॉल्यूम पर बज रहा है या फिर लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं। और ऑनेस्टली माइकल जैक्सन के सॉन्ग सुनते ही हम सबके अंदर का वो मून वॉकर थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाता है, राइट? चाहे घर पर हो या ऑफिस के कॉरिडोर में हो, अपने आप डांस निकल जाता है। वैसे अब निकलने की बात से मुझे याद है कि मुझे भी निकलना है यहाँ से। मेरा शो खत्म हो चुका है, मेरा पैसा हजम नहीं हुआ है, अभी मैं खर्च करूंगी जाकर। लेकिन अभी के लिए इतना ही। मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस पर। तब तक के लिए तुम मुझे जाकर फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस। वहां पर ही अपनी दोस्ती पक्की होगी MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। याद रहेगा ना? अभी के लिए ये याद रखो, खाओ पियो ऐश करो एंड बी रियली रियली गुड। टाटा बाय बाय फ्रॉम मी, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: यार कल ना मैं अपने एक स्कूल फ्रेंड से बात कर रही थी एंड एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई और मुझे रियलाइज हुआ कि जब स्कूल में ये चीज़ हुआ करती थी ना तो मैं बड़ा चिढ़ा करती थी, लेकिन आज जब इसने ये बात कही है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और हुआ ये था कि हम लोग टेक्स्ट पे बात कर रहे थे और मजाक चल रहा था दोनों के बीच में, एंड यू नो उसने फिर बात खत्म करी, आई टोल्ड हिम समथिंग, हाँ ही वॉज नॉट कीपिंग वेल, सो आई टोल्ड हिम गेट वेल सून मामू। तो उसने कहा ओके ठीक है मोटी। जब उसने ये लिखा ना तो मुझे हंसी आ गई, और हंसी के साथ ना देयर वाज दिस वार्मथ जो मुझे महसूस हुई, मतलब ऐसा लगा कि जैसे मेरे दिल को किसी ने ना एक बड़ी ही वार्म सी चादर में लपेट दिया। वो जो वर्ड था ना मोटी, ये आजकल के टाइम पर तो बोलेंगे कि ओ दिस इज बॉडी शेमिंग एंड ऑल, बट आई स्वेयर मुझे बिल्कुल भी ये बॉडी शेमिंग नहीं लगा। आई डिड नॉट टेक इट पर्सनली, आई रादर फेल्ट रियली हैप्पी अबाउट इट। यार इतने जमाने बाद किसी ने मुझे हक से मोटी कहा है। आई मीन स्कूल में ना ये हमेशा मुझे बोला करता था, ऐसे ही मजाक किया करता था, और मुझे बड़ा बुरा लगा करता था। मैं हमेशा चिड़ा करती थी कि क्या है मैं मोटी नहीं हूँ, तू मुझे मोटी नहीं बुला सकता। और आज जब उसने मुझे मोटी बोला तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ा, उल्टा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इस वर्ड में ना कोई बुराई नहीं थी बल्कि अपनाइयत थी। इस वर्ड में उसकी टांग खींचने की वो जो कोशिश थी वो थी, इस वर्ड में उसका मुझ पर हक जताना था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड सीरियसली सालों में किसी ने मुझसे इस हक से बात ही नहीं करी है। वही वाली बात है ना कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो इतने बड़े हो जाते हैं ना कि सबके लिए बड़े हो जाते हैं, सब अपनी एक सीमा जो है वो मार्क कर लेते हैं, एक अदब से पेश आ रहे होते हैं, एक तरीके से आपके साथ पेश आ रहे होते हैं, लेकिन जब आप अपने अपनों से मिलते हो ना तब आपको लगता है कि हाँ यार आज लगा कि हम वही दोस्त हैं और हमारे बीच में वही बॉन्ड है। रियलाइजेशन ये था कि यार कितने लोग हैं मेरी जिंदगी में जो इस हक से मुझे मोटी बुला सकते हैं और मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, और अगले वाले इंसान को बोलते हुए भी डर नहीं लगेगा, उसे हक लगेगा। और आपकी जिंदगी में अगर ऐसा कोई इंसान है तो उसे हमेशा के लिए रखना, जरूरी होते हैं ये लोग अपने आसपास। चलो जी इसी बात पे पुरानी यादों को ताजा करते हुए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ, आपसे कहती हूँ स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: जैसे इंसान की दो आंखें होती है ना, वैसे बॉलीवुड में भी दो आंखें हैं, एक 1993 की और एक 2002 की।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And today I'm going to talk about 1993 गोविंदा चंकी पांडे वाली आंखों के बारे में, जिसका कि ये गाना बड़ा ही सुपर डुपर हिट था। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज थी, बप्पी लहरी का म्यूजिक था एंड इंदीवर के लिरिक्स थे। और ये गाना, ओ माय गॉड, ये गाना तो आज तक भी हमें याद है। टेनाना टक टक टक टक टनाना, म्यूजिक ही ऐसा था यार। लेकिन आपको पता है, ये गाना आज जितना हिट है ना भाई, उस जमाने में यानी 1993 में तो ये इंस्टेंट हिट हो गया था चुटकी बजाते के साथ। बिकॉज इस गाने के अंदर परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लर्टेशन, मजाक और टपोरी रोमांस जो था। और इसी गाने की वजह से उस जमाने में गोविंदा भी बड़े फेमस हो गए थे। पर्दे के पीछे की बात यह है कि इस गाने को कंपोज रातों रात किया गया था, जब डेविड धवन ने बपीदा को कहा कि उनको ना कुछ रंगीन नॉटी चाहिए, बिल्कुल ही गोविंदा स्टाइल कुछ होना चाहिए। बस क्या, लाल दुपट्टा ऐसा निकल कर आया कि भाई मार्केट में भी लाल दुपट्टे छा गए। सो मच सो दैट कि वो तो फैशन में ही तब्दील हो गया। एंड एवरी गर्ल उस जमाने में वांटेड टू कॉपी द लुक फ्रॉम द सॉन्ग। और एक मजे की बात बताऊं आपको, वैसे इस बात में किसी को शक तो होगा ही नहीं कि इस गाने में जो कोरियोग्राफी है उसके अंदर गोविंदा के जो स्टेप्स है ना, वो किसी और ने नहीं, गोविंदा ने खुद कोरियोग्राफ किए। इनफैक्ट डेविड धवन ने क्लियरली बोल दिया था क्रू को कि यार गोविंदा को कोरियोग्राफ करने की जरूरत नहीं है, जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दो। और चंकी पांडे लेटर ऑन मजाक में एक इंटरव्यू ये बात बोली गए कि यार इस गाने के लिए अगर क्रेडिट देना है ना, तो गोविंदा की एनर्जी को देना चाहिए और मेरे हेल्पलेस एक्सप्रेशंस को देना चाहिए, विच आई वुड नॉट डिनाई। गोविंदा चीज ही ऐसी हैं यार कि उनके आसपास कोई भी हो ना, उसको ओवरशैडो कर ही जाते हैं। आज नहीं कर पाते वो अलग बात है, लेकिन हाँ उस जमाने में तो 100% ये बात सही थी। चलो जी, इसी बात पे, गोविंदा की इस मूवी से ना सही लेकिन कूली नंबर 1 से दिस गाना कमिंग अप योर वे। एनर्जी की पिच को हाई रखते हुए स्टे ट्यून विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आंखें भी दो होती हैं और आंखें मूवी में गोविंदा भी दो थे, लेकिन ये जितना बोलना आसान है उतना करना आसान नहीं था गोविंदा के लिए, यानी कि डबल रोल प्ले करना.
0: Mirchi Chat Room.
1: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा. And in the film आंखें, गोविंदा ने बुन्नू और मुन्नू इन दो कैरेक्टर्स का रोल प्ले किया था. बुन्नू जो कि डिसिप्लिन्ड बेटा था और मुन्नू जो कि एक टपोरी बंदा था. अभी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए गोविंदा घंटों आईने के सामने रिहर्स किया करते थे. इनफैक्ट जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो शुरुआत के जो दिन थे ना शूट के, उसमें तो कॉस्ट्यूम टीम जो थी वही कंफ्यूज हो गई थी कि बुन्नू के कपड़े कौन से और मुन्नू के कपड़े कौन से हैं. और एक बारी तो गोविंदा को उन्होंने जब मुन्नू का शूट होना था तो बुन्नू के कपड़े पहना के भेज दिया, जिसपे कि डेविड धवन भी हंस दिए और मिड शॉट बोल चुके कि यार ये बुन्नू और मुन्नू का कंफ्यूजन तो फिल्म के बाहर भी चल रहा है, फिल्म के अंदर तो अलग ही बात है. और इस फिल्म में कादिर खान साहब, जिन्होंने गोविंदा के फादर का रोल प्ले किया है, वो बड़े फेमस थे पूरे सेट पर बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो अपने डायलॉग्स ना खुद ही रीराइट किया करते थे. मतलब जो लिख कर आते थे वो परफॉर्म नहीं करते थे, अपने डायलॉग्स खुद ही बनाते थे. और इस बात से गोविंदा जो थे वो इतने खुश थे कि उन्होंने ये भी बात कही थी एक इंटरव्यू में कि उनके साथ काम करना ना एक एक्टिंग स्कूल की तरह है. क्योंकि जब इन दोनों लोगों का सीन हुआ करता था तो कादिर खान साहब तो ऑफकोर्स सीन के बीच में जबरदस्त इम्प्रोवाइज किया करते थे, और उन्हीं से सीख के गोविंदा भी बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज कर लिया करते थे. इनफैक्ट कादिर खान साहब की खास बात ये भी है कि हमने इतनी सारी मूवीज देखी है जिनके की डायलॉग्स की हमने खूब तारीफें की हैं, खूब कदर करी है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो फिल्मों के डायलॉग्स कादिर खान साहब ने लिखे हैं. वो फिल्मों के बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे, क्योंकि यार इसके लिए तो एक अलग ही मिड डे मोहब्बत शो होना चाहिए. और इसी बात पर कमिंग बैक टू द फिल्म आंखें, जो मैं बात बता रही थी ना कि कादिर खान साहब और गोविंदा जब सीन किया करते थे साथ में तो इम्प्रोवाइज करते रहा करते थे. इनफैक्ट एक सीन तो ऐसा था जिसमें कादिर खान साहब ने मतलब एकदम से ही एक नया डायलॉग जो है वो गोविंदा की तरफ फेंक दिया. अब गोविंदा जो थे उन्हें इतनी जोरों की हंसी आई जिसको कि उन्होंने कंट्रोल कर लिया सो दैट ये सीन खराब ना हो, और उस हंसी को कंट्रोल करते हुए एक्टर में रहते हुए उन्होंने वो सीन दे दिया. एंड दैट स्पॉन्टेनियस मोमेंट इट मेड टू द फाइनल कट. वैसे एक बात तो है, अगर हम एक्टर बन जाए ना अपने करियर के हिसाब से भी, तो जो हम जिंदगी को बोलते हैं ना कि कितनी स्पॉन्टेनियस है, कभी भी कुछ भी हमारी तरफ फेंक देती है, वैसे ही हम एक्टिंग में भी जिंदगी की तरफ भी कुछ भी स्पॉन्टेनिटी दे सकते थे, यानी कि जिंदगी के साथ भी हमारा मन खेल सकते थे. बट एनीवेज हम जहां हैं वहां अच्छे हैं, क्या बोलते हो? चलो जी, विद दिस स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बिफोर यामी गौतम मेड इट टू द बिग स्क्रीन, उससे पहले उन्होंने टेलीविजन में भी काम किया है बॉस, और वहीं से ही आया चांद के पार चलो द शो, जिसके कि हम सभी दीवाने थे, क्योंकि इस एक शो के अंदर तीन हैंडसम बंदे थे बॉस।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एक बड़ा ही हटके से प्लॉट था इस शो का, जो कि उस जमाने में हुआ करते थे एक्चुअली, जहां पर बात होती है लव ट्रायंगल की, और ये लव ट्रायंगल होता है बिटवीन सना, अनीसा एंड रेहान। उसके बाद रेहान और सना पिक्चर से आउट हो जाते हैं और अनीसा जो है वो मुंबई चली जाती है, और वहां पर शी मीट्स अर्जुन एंड राहुल सिंघानिया, जो कि एक बड़े से मीडिया हाउस के ओनर्स थे और भाई थे। बस कहानी में उतार चढ़ाव इन्हीं चीजों को लेकर चलते रहते हैं, और ये स्टोरी बन जाती है इस बात को लेकर कि अनीसा को उस ग्लैमरस दुनिया में अपनी एक जगह बनानी है। अगर हम कास्ट की बात करें तो यार इतनी गुड लुकिंग कास्ट थी यार, एक तरफ यामी गौतम तो दूसरी तरफ विवान भटेरा, अमर उपाध्याय एंड अहम शर्मा, सच गुड लुकिंग गाइज मैन। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं झूठ नहीं बोल सकती आपसे, लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता ही था यार कि कहानी को लेकर मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ करती थी, बल्कि इन तीन गुड लुकिंग बंदों को देखने के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हुआ करती थी। दोज वर द डेज जब टेलीविजन पर भी इतने खूबसूरत चेहरे देखने को मिलते थे, तो व्हाई नॉट, वो भी ऑन अ डेली बेसिस यार, तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। रीलिविंग द मेमोरीज ऑफ द शो चांद के पार चलो ऑन मिडडे मोहब्बत टुडे। एक काम करो ना, मुझे डीएम करके बताओ ना कि ये शो आपको कितना पसंद था या नहीं था, या याद है या नहीं है। डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म करण अर्जुन। ये वैसे सिचुएशन जो है ये दो लव बर्ड्स के बीच में है कि बंदी कह रही है कि यार जाती हूँ मैं, तो बंदा कह रहा है कि यार जल्दी है क्या, रुक जाना, बैठ के थोड़ा और टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जरा सोचो इसी सिचुएशन को अगर उठा के रख दिया जाए मेहमानों के ऊपर, कि अगर वो यू नो जाने से पहले हेड्स अप दे रहे हैं कि अच्छा चलो हम चलते हैं, जाते हैं हम, तो अगला इंसान ये नहीं कहेगा कि जल्दी है क्या, अगला इंसान मन ही मन कहेगा कि है चलो अच्छा ठीक है फाइनली अब जाओ जी हमारा काम खत्म, हम जरा बर्तन किचन में रखने के बाद अपना टेलीविजन का कार्यक्रम देखेंगे या फोन देखेंगे या लेटेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन एटलीस्ट मेहमानों को एंटरटेन नहीं करेंगे। लिरिक्स सेम है लेकिन सिचुएशन बदल दोगे तो मतलब और मकसद दोनों ही बदल जाता है गानों का, नहीं क्या?
1: सारा जमाना ए सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड भाई अब बारी है मान ना मान करो गानों की पहचान की, और अभी यहाँ पे सीन ऐसा है कि मैं आपके लिए दो गानों की धुनों को मिक्स करके चला दूंगी और आपको गैस करना होगा कि ये दो धुनें कौन से गानों की है। तो आज का जो मिक्स है वो है कुछ यूं।

बस जी, अब आपको डीएम करना और माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और बता देना इन दोनों गानों के नाम. एंड स्टे ट्यून्ड रहना है विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: यार हम तो इसी सवाल में उलझ के रह गए कि लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। इससे आगे तो हमने सवाल ही नहीं किया कि क्या ये गाना ओरिजिनल है या नहीं।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा एंड हम तुम का। ये कंट्रोवर्शियल सॉन्ग कंट्रोवर्शियल इसलिए क्योंकि लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो बेसिकली कंट्रोवर्सी का रुख जो है वो हम तुम के पंगे पर चला गया था। बट असल पंगा तो ये है कि ये गाना एक्चुअली कंट्रोवर्शियल हो सकता है।

क्योंकि जतिन ललित की दी गई ये म्यूजिक इज नॉट रियली ओरिजिनल। वेल दिस गाना लड़की क्यों न जाने क्यों, इसका जो सिग्नेचर म्यूजिक है ना, दैट इज एक्चुअली पिक्ड अप एक आर्मेनियन सिंगर के गाने से। बंदे का नाम है एंडी और इस गाने का नाम है एंड माई हार्ट। गाना गोज दिस वे।

एंडी को शायद ये भी नहीं पता होगा आर्मेनिया में बैठे हुए कि एंडी के गाने का इंडिया में हो गया है अंडी वंडी शंडी। Stay tuned with me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: उफ, ये आवाज आज तो मुझे नॉस्टैल्जिया लगती है, लेकिन उस टाइम पर ये नॉइज भी थी और साथ ही साथ इस बात का हिंड्रेंस भी कि अब टीवी देखने को नहीं मिलेगा।
0: नब्बे की गप्पे।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, कुछ शोर जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। आज के दौर में तो वो मुझे अच्छे ही लग रहे होते हैं, लेकिन जब उस टाइम पर केबल टीवी पर ये दिखाई दिया करता था ना, दाने दाने दाने, और यू अजीब सा वाइट स्टैटिक नॉइज आया करता था, तो बड़ी चिड़ुआ करती थी कि ओ नो, केबल चला गया, अब हम पिक्चर कैसे देखेंगे। और बड़ी इरिटेशन हुआ करती थी यार, बिकॉज दिस वॉज क्लियरली नॉट अ गुड साइन, क्योंकि हम सारे के सारे कजन जो थे ना, वो बड़ा मूड बना के टेलीविजन चालू किया करते थे कि यार अब होमवर्क हो गया, खेल लिए, अब हमारा टीवी टाइम है, अब हम केबल देखेंगे। लेकिन रखा रह जाता था हमारा टीवी ऑन टेबल और नहीं चल पाता था हमारा केबल, जब ये आवाज हमें सुनने को मिलती थी और वो टीवी पर दाने दाने दाने दाने अजीब से कीड़े मकोड़े देखने को मिला करते थे। कितना ही रिमोट चला लो या कितना ही टेलीविजन का नॉब घुमा लो, कुछ ना होता था। और फिर आता था एक आखिरी आइडिया कि चलो एंटीने को हिलाकर देखते हैं। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डियर लूना,
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हें देखे जमाने बीत गए यार, लेकिन तुम्हारी याद अब भी दिल के किसी कोने में इंजन की हल्की टर टर की तरह गूंजती रहती है। कितनी सादगी थी यार तुम में, ना कोई डिजिटल डैशबोर्ड, ना भारी भरकम बॉडी, बस एक भरोसेमंद साथी जो हर सुबह तैयार रहती थी चाहे सर्दी हो या हो गर्मी। याद है मोहल्ले के लड़के लड़कियां बारी बारी से तुम्हें चलाने का ख्वाब देखा करते थे। तुम किक स्टार्ट नहीं पेडल स्टार्ट हुआ करती थी और हवा से बातें करती हुई निकल पड़ती थी सकड़ी सी गलियों से स्कूल कॉलेज ऑफिस तक। वो अलग बात है कि वो जो तुम हवा से बातें करती हुई निकलती थी ना, वो उस जमाने के हिसाब से स्पीड ठीक थी। आज के जमाने में तो 40 के ऊपर चला लेते हैं नॉर्मल में भी। बड़ी ही सादगी का दौर था वो जब तुम आई थी कि तुम्हें घर पे लाने पर ही लोगों के सीने चौड़े हो जाते थे। आज तो लग्जरी कार्स भी आ जाए तो व्हाट नेक्स्ट की बात आ जाती है। वैसे तुम सिर्फ एक गाड़ी तो नहीं थी यार, तुम तो उस दौर की आजादी थी जब हेलमेट जरूरी नहीं था पर मुस्कुराना जरूरी था, जब हवा में उड़ते दुपट्टे और कानों में बजते तुम्हारे इंजन की आवाज किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगते थे। आज जब मैं किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होती हूँ ना, तो तुम्हारी याद बहुत आती है। बिना शोर के चलने का मजा तो है पर वो रूह से जुड़ाव नहीं है। तुम तो फैमिली का हिस्सा थी यार, किसी एड की तरह लूना है ना कहकर घर वाले बेफिक्र हो जाते थे। कभी किसी म्यूजियम में तुम्हें फिर से देखूँ ना, तो शायद वही पुरानी मुस्कान लौट आएगी और मेरा दिल एकदम से छलांग मार चुका होगा उस सादे प्यारे से जमाने की सवारी बनने के लिए। प्यार और यादों के साथ तुम्हें याद करती तुम्हारी सवारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची 'cause it's hot।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अलका याग्निक, सोनू निगम और करीना कपूर की आवाज में ऐसा कौन सा गाना है जो अब बनने वाला है कैसेट के साइड ए का तीसरा गाना?
2: मिर्ची 90s कैसेट।
3: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?
1: दीवाना है देखो बेकरार वो, संभालो संभालो ना प्यार हो। और ये एग्जैक्टली वो मोमेंट था जब पू को रोहन से मोहब्बत तो नहीं लेकिन हाँ एक इनक्विजिटिवनेस जरूर सी हो गई थी कि ये बंदा आखिर है कौन जिसकी तरफ मैं खींची चली जा रही हूँ। एंड ये गाना जो है इसका पिक्चराइजेशन एवरीबडी रियली लव्ड इट, कुछ हटके सा ही था। एंड इनफैक्ट करीना कपूर की कलरफुल वार्डरोब, द कलरफुल कार्स एंड जो डांसर्स इतने अतरंगी नजर आ रहे हैं, ऑल ऑफ इट मेड द सॉन्ग लुक वेरी मेसमराइजिंग एंड मैजिकल। लेकिन इस गाने की एक और बड़ी खास बात है एंड दैट इज ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस। वेल ये गाना फॉरेन कंट्री के किसी एक म्यूजियम में शूट हुआ था और वहां पर इस गाने को शूट करने के लिए जो मोहलत दी गई थी दैट वाज नॉट क्वाइट अलॉट, एक घंटे का या दो घंटे का इन लोगों को टाइम दिया गया था कि इतना टाइम है आपके पास, जितना शूट कर सकते हो कर लो। एंड एक गाने को शूट करने में बहुत टाइम लगता है बॉस, लेकिन ऋतिक रोशन का जो टैलेंट है रिगार्डिंग डांस वो यहाँ पर काम आया। एंड फराह खान जो इस गाने को कोरियोग्राफ कर रही थी वो इतनी खुश हुई और जबरदस्त तरीके से सरप्राइज और शॉक हो गई कि ऋतिक रोशन ने कितनी जल्दी इस गाने की शूट निबटवा दी विद इन द टाइम स्पैन जो कि म्यूजियम वालों ने दिया था कि आप इतने में ही इस गाने को शूट कर सकते हो वरना सॉरी बॉस। एंड विदाउट मेंशनिंग दिस फैक्ट अबाउट दिस गाना, ये गाना मैं तो नहीं चला सकती थी। चलो नाउ आई कैन प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू। जाते जाते ये गाना आपके लिए लगाती भी जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हमें रही प्यार की लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची 'cause इट्स हॉट।

Michi. It's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: क्या आपको भी एक टाइम पे परवीन बाबी और जीनत अमान में बड़ा कंफ्यूजन होता था, दोनों एक जैसी लगती थी?
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।
2: आपको भी ऐसा लगता था तो गिव मी अ हाई फाइव।
1: छोटी होती ऐसी कंफ्यूजन बहुत होती थी ना, जैसे मुझे एक बड़ी कंफ्यूजन होती थी नेल्सन मंडेला और मंडल कमीशन में।
2: वेल लेट्स नॉट गो देयर, पॉलिटिकल मामला है, सेंसिटिव मामला है, हम फिल्मों पे वापस आते हैं।
1: दो गानों में भी मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी, एक तो ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे और एक ओ मेरी सोनी। बड़ी मुश्किल से बड़े टाइम के बाद क्लैरिटी मिली कि ओ मेरे सोना रे तीसरी मंजिल का गाना है, शम्मी कपूर साहब आशा पारेख पे पिक्चराइज्ड, एंड ओ मेरी सोनी मेरी तमन्ना यादों की बारात का गाना है, पिक्चराइज्ड ऑन विजय अरोड़ा एंड परवीन बाबी एंड जीनत अमान। गाना सुन लेते हैं, मैं हूँ चारू आपके साथ,
2: आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: It's hot.
0: Purani jeans. With Charu. Only on Mirchi.

0: क्या खूबसूरती होती थी, सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: उन दिनों में ये होता था कि इफ देर वॉज अ स्मॉल मिस्टेक ऑल्सो तो एवरीबडी हैड टू मतलब दोबारा से पूरा गाना पड़ जाता था, बजाना पड़ जाता था। यू हैड टू बी मोर प्रिपेयर्ड कि ये नहीं होता था कि चलो एक वर्ड गलत गा दिया तो उतना एक वर्ड आज के जैसे। एंड देन ऑफकोर्स एवरीबडी न्यू कि क्या गाना चल रहा है, तो म्यूजिशियंस मतलब फुल ऑर्केस्ट्रा के साथ हम लोगों की कभी कभी रिकॉर्डिंग्स में 2-3 घंटे लग जाते थे, कभी दिन भर लग जाता था। और मुझे याद है कि स्पेशली सुभाष घाई जी के लिए तो 2-2 दिन तक रिकॉर्डिंग चलती थी, तो उस वक्त की वो ब्यूटी एक अलग ही थी।
0: ब्यूटीफुल, लेकिन अभी हम जो गाना सुनने वाले हैं वो ऐसा ब्यूटी टाइप का नहीं है, वो थोड़ा बीस टाइप का है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची,
2: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
3: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

आपको पता है देवानंद साहब अपनी डिस्कवरी जीना तमान को किस नाम से बुलाते थे? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो उनको बुलाते थे जीनी बेबी कह के। जी, एंड अपनी बुक में उन्होंने ये मेंशन भी किया है कि उनके मन में जीना तमान के लिए एक टाइम पे फीलिंग्स आ गई थी। सो ये वन साइडेड फीलिंग्स थी क्योंकि जीना तमान यूज टू लुक अप टू हिम एज हर मेंटोर ओनली। हाँ, ये लव इश्क प्यार मोहब्बत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सीन क्रिएट कर देता है कई बार, और आप भी एक बढ़िया सा सीन क्रिएट कीजिए ना जिसमें आपकी मुस्कान जा रही है कान तक। और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।

एक बहुत ही सुंदर गाना दो सुंदर आवाजों में। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1969 की फिल्म प्यार का मौसम का गाना तुम बिन जाऊं कहां, जो मोहम्मद रफी साहब और किशोर कुमार साहब दोनों की आवाजों में रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि दो अलग अलग किरदारों पे पिक्चराइज था। एक तो फिल्म के जो हीरो हैं शशि कपूर साहब, उन पे जो पिक्चराइज था वो रफी साहब की आवाज में था, बिकॉज ये एक रोमांटिक सॉफ्ट वर्जन था। इसके वीडियो में शशि कपूर साहब हैं और आशा पारेख जी हैं, इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग। लेकिन जो दूसरा वर्जन है किशोर कुमार साहब वाला, वो भारत भूषण जी पे पिक्चराइज था। भारत भूषण जी जो शशि कपूर के फादर प्ले करते हैं, और इसका आप वीडियो देखेंगे तो वो गाना गा रहे हैं अपने उनकी फैमिली साथ में, उनकी बीवी और बच्चा साथ में है, छोटा सा बच्चा और उनकी वाइफ। तो बिल्कुल ही अलग फील है, रफी साहब वाला जहाँ रोमांटिक है, ये वाला सोलफुल है। और यहाँ हम कौन सा वर्जन सुनने वाले हैं? वेल, जो यूजुअली सुनते हैं उससे डिफरेंट। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Irani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi. It's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Charu, only on.

0: मिड 60s में FTII पुणे से अपना एक्टिंग कोर्स करने के बाद बॉम्बे में काफी स्ट्रगल करने के बाद जब काम नहीं मिल रहा था तो असरानी साहब FTII में ही एक्टिंग के प्रोफेसर बन गए, साथ साथ अपनी स्ट्रगल भी कर रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी इसी इंस्टीट्यूट में गेस्ट फैकल्टी थे। असरानी साहब अक्सर उनसे मिलते रहते थे, काम मांगते रहते थे। एक बार ऋषिदा जब गुड्डी फिल्म की कास्टिंग के लिए इंस्टीट्यूट आए तो क्या हुआ, सुनिए एक बार असरानी साहब ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था।
1: उनके दो तीन असिस्टेंट राइज साथ में आए थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई कौन सी फिल्म है, क्या है? बोले कुछ नहीं, लड़की ढूंढ रहे हैं वो गुड्डी के लिए, बाकी तो कुछ नहीं, और ये बताते कुछ है नहीं, कहानी में कौन है, क्या है, क्या है। बोले काफी मैंने पूछा उनसे तो बोले हमारा नाम लेना मत यार तुम, एक छोटा सा रोल है जो एक लड़का गाँव से आता है हीरो बनने के लिए और एक्स्ट्रा बन जाता है जूनियर आर्टिस्ट, मगर हमारा नाम मत लेना। उसमें गुलजार साहब भी थे, सब बता के चले गए। अब वो आए रिश्ते वहाँ से लड़की का जिया बहादुर से मिलके वापस कार में बैठने लगे तो मैंने कहा दादा हाँ बताएगा, हम बताएगा भाई, बट मैंने कहा ये सेलेक्ट हो गए क्या? नहीं नहीं अभी स्क्रीन टेस्ट होगा, हम देखेगा। ओके मैंने कहा दादा हमारा भी कुछ तुमको बोला ना, हम करेगा करेगा, मैंने कहा 3 साल हो गया करेगा करेगा बोलता, कब करेगा?
0: वेल इसके आगे क्या हुआ सुनेंगे थोड़ी देर के बाद, राइट हियर पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: ये लेट 70s की बात है जब अस्टानी साहब FTII पुणे में एक्टिंग के प्रोफेसर का काम भी कर रहे थे और वीकेंड्स पे बॉम्बे जाके फिल्मों में काम भी ढूंढते थे। तब डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी गुड्डी फिल्म की कास्टिंग के लिए FTII पुणे आए और किसी तरह ऋषिदा के असिस्टेंट से बात करके असरानी साहब ने ये पता लगा लिया कि इस फिल्म में एक ऐसा रोल है जो शायद उनके लिए ठीक हो सकता है। इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में असरानी साहब ने क्या कहा था।
1: तो मैंने उनको बोला, दादा गाड़ी में बैठते, एक है एक लड़का आता है गांव से हीरो बने। कौन बोला तुमको ये? बोला कौन? कीरे जी, होशी कीरे, सब जो जितने असिस्टेंट थे उनको, तुम किसने बोला कि होशी कीरे? कौन बोलता कहानी? बाप रे, मैंने बोला माफ कर दो मुझे मत। बोला बोला ना, हम चिट्ठी भेजेगा। बड़े डांटते आके चले गए। और उस वक्त क्या था, जब चिट्ठी कोई किसी की आती थी बाहर से कहीं से भी, नोटिस बोर्ड पे लगा देते थे, वहां से पिकअप कर लो। तो मैं रोज देखता था कोई चिट्ठी आ जाए। फिर एक दिन चिट्ठी आई और उसमें नाम था जया भादुरी का। इससे पहले कि वो पहुंची बॉम्बे, मैं पहुंच गया बॉम्बे। और जाके मैंने बोला, दादा, बोले तुमको थोड़ी चिट्ठी लिखा है। फिर उनको दया आगे होगी। फिर स्क्रीन टेस्ट हुआ उनका और ये दो सीन का रोल मुझे दिया उन्होंने गुड्डी में, वहाँ से शुरू।
0: और यहाँ से जो शुरू हुआ तो 50 साल का एक मैग्निफिसेंट ब्रिलियंट करियर बन गया। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू, आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: देख रे एक ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल,
1: सिग्नल को तोड़ दो बात बड़ी सिंपल।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: ओ भाई भाई भाई भाई भाई भाई, पहली फुर्सत में जाके एक फिल्म देखो।
1: फिर जी सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो मेरा मूवी रिकमेंडेशन है 1973 की फिल्म दो फूल, और इसमें दो फूल कौन है? पुट्टन और छुट्टन, दो भाई लुक्खे लफंगे लेकिन रईस। रईस बाप की बिगड़ी औलाद जो हार्मलेस है लेकिन आवारा है, जिसे जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। और ये किरदार निभाए हैं पुट्टन एंड छुट्टन वाले महमूद साहब और विनोद मेहरा जी ने।
0: जी
1: इसमें अशोक कुमार भी हैं जो इनके फादर बनते हैं, जीवन साहब भी हैं, और महमूद साहब का डबल रोल है इसमें, एक बंदर भी है। तो बेसिकली इन केयरफ्री केयरलेस लड़कों को इनका बाप घर से निकाल देता है, उसके बाद ये क्या शरारत करते हैं और कैसे फिल्म आगे बढ़ती है और क्या गचड़ पचड़ कंफ्यूजन होती है, इज द होल फन। महमूद साहब भाई क्या कॉमेडी, उनकी हैट्स ऑफ वंस अगेन। ए बाय द वे, इसी मूवी से इंस्पायर्ड है 1993 की मूवी आंखें, गोविंदा चंकी पांडे वाली, तो मिस मत करना। फिल्म का नाम दो फूल। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई

वो एक कांस फिल्म फेस्टिवल होता है ना, वो तो आपको पता है उसके बारे में। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जी वही फिल्म फेस्टिवल जिसमें फिल्मों की बात कम होती है, उसमें लोग क्या अतरंगी कपड़े पहन के आ रहे हैं उसकी ज्यादा बात होती है। अच्छा, सो कांस फिल्म फेस्टिवल में एक सेगमेंट होता है कांस क्लासिक्स, जहाँ पे क्लासिक फिल्में शोकेस की जाती हैं। और पहली इंडियन फिल्म जिसे वहां शोकेस किया गया था और उस फिल्म की टीम को इनवाइट किया गया था, वो फिल्म थी गाइड। सो 2008 में देवानंद साहब बकायदा कांस गए थे, वहां के रेड कार्पेट पे चले थे और ये गाइड फिल्म वहां पे शोकेस हुई थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: Mirchi, it's hot.
1: Oh, Sonia, my chutia.

मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद जारू, ओनली ऑन

आजकल चिट्ठियां विट्ठियां कोई लिखता भी है कि नहीं लिखता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एक टाइम था जब चिट्ठियां लिखना फिर उन चिट्ठियों के जवाब का इंतजार करना हमारा फेवरेट टाइम पास हुआ करता था, नहीं क्या छोटे होते? और सिर्फ रोमांटिक चिट्ठियां नहीं भाई, हम अपने रिश्तेदारों को भी चिट्ठियां लिखते थे, कजिन्स को भी चिट्ठियां लिखते थे, कोई हमारा दोस्त दूसरे शहर में रहता है उसको भी चिट्ठी लिखते थे, पेन फ्रेंड्स हम बनाते थे उनको भी चिट्ठी लिखते थे। और चिट्ठी लिखने भेजने के बाद उसके जवाब का जो इंतजार होता था, अच्छा फोन पे लैंडलाइन फोन पे भी बात हो जाती थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो जो लिखे हुए लफ्ज पढ़ने में उसमें से जो इमोशंस निकलते थे उनको फील करने में जो मजा आता था ना, वो मजा अलग ही था भाई। इसीलिए मैं ऐसे सोच रही थी कोई चिट्ठियां आजकल लिखता भी है कि नहीं लिखता है, मुझे तो बस बैंक की चिट्ठियां आती हैं और कोई चिट्ठी आती नहीं है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप मुझे चिट्ठी ना से हेलो हाय लिख सकते हैं इंस्टाग्राम पे @rj.charu rj.charu ये मेरा यूजर नेम है। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: अब बहनों और भाइयों, 1968 का ये सुपरहिट गीत जो गीत माला में पायदान नंबर 29 पर रहा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ब्रह्मचारी फिल्म का दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, कंपोज बाय शंकर जयकिशन, रिटन बाय हसरत जयपुरी एंड संग बाय मोहम्मद रफी। और क्या सिंगिंग है रफी साहब की इस गाने में भाई,
1: मतलब दो लाइन ऊंचे सुर में फिर दो लाइन एकदम नीचे सुर में। कल तेरे जलवे पराए भी होंगे लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी ऊंचे सुर में, और फिर फूलों की डोली में होगी तू रुख।

सख्त लेकिन महक मेरे सांसों में होगी नीचे सुर में। ब्रिलियंट ब्रिलियंट सिंगिंग रफी साहब, सदके वारी जाऊं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: रेखा हमेशा वक्त से आगे चली हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है 1983-84 में उन्होंने अपनी फिटनेस को लेकर एक ऑडियो कैसेट रिलीज की थी। इस बारे में उसी दौरान एक बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: मैंने कुछ साल पहले एक्सरसाइज योगा करना शुरू किया। उससे पहले मैं कभी योगा करती नहीं थी, किसी किस्म का एक्सरसाइज नहीं करती थी। फिर मैंने सोचा आई लाइक व्हाट आई डिड, काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ा योगा करने से। उस वक्त मैं कम फिल्मों में काम कर रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं फिल्मों में काम करूं कि नहीं करूं। मेरे पास बहुत वक्त, मतलब फ्री टाइम आई हैड। एंड देन रमा बंस, शी इज़ वेरी गुड एट योगा, तो कहने लगे कि अगर आपको इतना अच्छा लग रहा है तो व्हाई डोंट यू कम आउट, यू बीइंग अ फिल्म स्टार, एंड व्हाई डोंट यू कम आउट विद द टेप। तो वो टेप काफ़ी पॉपुलर भी होगा और एंड यू नो बिकॉज यू आर डूइंग इट, कोई नहीं तो आपके फैंस ज़रूर खरीदेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स अ गुड आइडिया, इट्स एन ऑडियो टेप, इट्स नॉट अ वीडियो टेप। तो मैंने किया, बाय गॉड्स ग्रेस इट्स अ वेरी बिग हिट।
0: वेल, इस ऑडियो कैसेट का नाम है रेखाज माइंड एंड बॉडी टेम्पल और इसकी एक कॉपी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, जिसमें इस ऑडियो के साथ रेखा की एक्सरसाइज और योगा फिटनेस के कुछ फोटोज भी हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची मिर्ची इट्स हॉट पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

1973 की फिल्म राजा रानी का एक बहुत ही पॉपुलर गाना रहा है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये पॉपुलर गाना इज इंस्पायर्ड बाय और सैम्पल्ड फ्रॉम एक अंग्रेजी गाना जो 1969 में रिलीज हुआ था। बैंड का नाम द फिफ्थ डायमेंशन, गाने का नाम एज ऑफ एक्वेरियस। सुनिए जरा थोड़ा सा। समझ में आया आपको कौन सा गाना है ये? Written by आनंद बख्शी, sung by आशा भोसले एंड भूपेंद्र, composed by R.D. बर्मन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पता लगूंगा।
1: इस एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ 20 मिनट की जरूरत होगी।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: वेल बाबू मोशाय, जिस लेवल पे हमारा अटेंशन स्पैन आज के डेट में हो गया है, लंबे ड्यूरेशन वाली मूवीज हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। बस इसी के मद्देनजर आज का पांच का पंच की लिस्ट लेकर आई हूँ, जिसमें आई एम डिस्कसिंग 5 साइकोलॉजिकल थ्रिलिंग शॉर्ट मूवीज जो 20 मिनट में ही आपको इस लेवल पे एंटरटेन करेंगी दैट आपके मुंह से निकलेगा वाह श्रुति क्या सजेशन दिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द मूवी कृति, जो है 18 मिनट 51 सेकंड्स की फिल्म, डायरेक्टेड बाय सुरेश कुंदर। और इस मूवी में मनोज बाजपेयी, राधिका आप्टे और नेहा शर्मा लीड रोल्स में हैं। बाकी कहानी है सपन की, जिसको एक बार फिर से प्यार होता है और इस बार कृति से। बट क्या वो सच्चा प्यार है? बस इसी को जानने में उसकी मदद करती है उसकी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर कल्पना। सो बकल अप फॉर द साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर बाबू मोशाय। बाकी मेरी इस लिस्ट में 4 और ऐसी ही फिल्मों की बातें बाकी हैं। ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। श्रुति आपके साथ है।

स्टेशन तेरे मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

माइंडेड। अरे मेरे जैसे डांस किसको आता है, कोरियोग्राफर को मैं ही सिखा दूं।

0: यार इससे अच्छा तो हम टेलीपैथी टेलीपैथी खेल लेते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, और इस दुनिया में पाए जाने वाले दो तरीके के मैसेज भेजने वालों की चर्चा हो रही है। फर्स्ट आर द पीपल जो वर्ड्स में बातचीत करते हैं मैसेजेस के थ्रू, मतलब ये टाइप करना पसंद करते हैं, इमोजीज उतना इनके मैसेजेस में चैट्स में आपको नजर नहीं आएगा, और किसी दिन इनको लिखने लिखने का मन नहीं हुआ तो एंड ऑफ कोर्स वॉइस नोट इज द गो टू थिंग। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है, आय हाय हाय, भगवान ने बड़े फुर्सत में बनाया है इनको, क्योंकि इनको ना वर्ड्स ABCDEFGHIJKLMNOPQR पता ही नहीं है, शायद ये भूल चुके हैं, क्योंकि इनकी कॉन्वर्सेशन होती है सिर्फ और सिर्फ इमोजीज के जरिए। और अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि अरे ये तो हमारे जेंजी है ना, मुन्ना ना, जेंजी इज वे ओवर इमोजी, वो जिप्स में बात करते हैं, वो अब्रिविएशंस में बात करते हैं, इफ यू नो यू नो। बाकी आप इन दोनों में से किस कैटेगरी में हो बताने के लिए मिर्ची श्रुति के नाम से फेसबुक या इंस्टा पर कनेक्ट कर सकते हो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: बदल गया।
1: रखू ना बिब कोई भी शंका, अपने प्यार का बजा दो डंका, तेरे मेरे बीच में जो कोई भी आया उसकी लगा दो लंका। छोड़ छाड़ के दुनियादारी, बस तेरे पीछे पड़ गया मैं, सपनों में तो ऑलरेडी घोड़ी वोड़ी चढ़ गया मैं, मुझको